0: रेडियो साइन 89.8 मेगाहर्ट्ज
1: साहिनो समय सूचक अहिले मध्याह्नको 12 बज्यो। इट्स 2 PM।

हमें भी ऐसे दूसरे बनना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर नॉर्म है, इतने सालों से हिम्मत उठा रहे हम आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो।

0: ये रख लो पैसे।
1: क्या घर या घर भी आ गया
0: बावलट?
2: कौन?
0: पता नहीं, तारुपी की गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
2: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

हार्दिक निमन्त्रणा। राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूको संकल्पमा गोरक्षपीठको आदेश अनुसार 2083 वैशाख 17 गतेदेखि 59 दिनसम्म सञ्चालन हुने श्री शिव गोरक्ष योगी नरहरिनाथ साङ्कोटी होम महायज्ञ 2083 हवन सामग्री सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान बागेश्वरी आश्रम देवघाट धाम चितवन। आयोजक श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रम एवं श्री सनातन सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण संघ।